0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 10 AM
3: अहिले बिहानको 10 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण
1: 97.6 MHz हरपल हर तपाईसँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: इट्स 5 PM
4: अहिले अपराह्नको 5 बज्यो।

0: अनिस टेम्बे लिम्बू सभा पोखरी गाउँपालिका 4 सुनखुवा सभा हाल मलेसिया।
1: जुनिता चामलिङ राई फिदिम नगरपालिका 5 सर सिउला केराबारी 5 सर हाल कुवेत।
0: कृष्ण तामाङ 5 खपन नगरपालिका 6 वाना हाल साउदी अरब।
1: रवि पहरी हेटौडा मकवानपुर गाउँपालिका 2 राई गाउँ हाल मलेसिया।
0: साइली सुनिया कुलम मकालु गाउँपालिका 6 सुनखुवा सभा।
1: सुस्केरा जीवन सुन्दास सुन्देवा गाउँपालिका 2 नेवार गाउँ 5 सर हाल कुवेत।
0: सपना तामाङ मोक्तान 5 खपन नगरपालिका 7 वावन सङ्खुवा सभा।
1: समीक्षा जोशी तुम्बेवा गाउँपालिका 2 मौवा 5 थर।
0: निष्कल चेवाली कान्छा खाम्बारी नगरपालिका 2 सङ्खुवा सभा फिलहाल साउदी अरब।
1: युनिसा ब्लोन तामाङ धर्मदेवी नगरपालिका 4 मामलिङ सङ्खुवा सभा।
0: सुजन कुलुङ राई सिलिचुङ 1 बेसिन्दा सङ्खुवा सभा हाल कतार।
1: सुमिता याखा लिम्बुखिम चैनपुर नगरपालिका 10 खराङ सङ्खुवा सभा।
0: दिलसा राई माई नगरपालिका 1 पिलाङ।
1: र ठुलदाई श्रीराम दाहाल चैनपुर नगरपालिका 11 लोहाकोट सङ्खुवा सभा।

0: रेडियो अरुण अरुण
1: 97.6 MHz हरपल हर तपाईसँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: इट्स 5 AM
4: अहिले बिहानको 5 बज्यो।